0: का कभी नहीं देखा, तो झूठ ना बोलो सच बोलो अल्लाह के वास्ते। तीसरी बात फरमाई हुस्न खलीकतन, अपने अखलाक अच्छे कर लो। और अच्छे अखलाक का एक लफ्ज है बर्दाश्त, लोगों की बर्दाश्त करो, नेगेटिविटी बर्दाश्त करो। चौथी बात आपने फरमाई इफ्फतुन फी तुअमतिन, कि रिज़्क हलाल कमाओ, हराम ना कमाओ, हराम चीजों का कारोबार न करो, उससे कभी चैन नहीं आता।
1: करक और उसके मजाफात में अजान जोहर का वक्त हो चुका है।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।

आप सुन रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करण। आप सुन रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करण।

0: रेडियो अमन नेटवर्क न्यूज एंड इंफॉर्मेशन स्टेशन।
1: बहुत सह चुका दिल से तुम दर्शतम।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 करक, जहां मौसीकी, मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो अमन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

0: Τώρα είμαστε με τη Δάρτα που γεγίζει από τα σαπάρ και δεν θα έχω χωστηθεί.
1: Για να θέσαι τα ρεκανά από σαπάρ και έχουμε ίσμα washing powder ο χωστηθεί.
0: Ίσμα washing powder. Μάρα είμαι ζή μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ washing powder βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίγε τα σαραγγε σαρα προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεκανά τα γιλεύε χάρ βαθτε μούταχαν κούρσε κραλή. Χωτσε καλά να με κούρτα ίσμα washing powder βοήβη ρικρέτη ως τούλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरा ब्रो उदार तो हुई या चेप इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पयुक्षले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सारा खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सा पई पवात लोसीना न खर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला रिजल्ट या दाई दार तो हुई है दाओ मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाओ तो दफा बने गलसे अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शेयर मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर से मिला भी जी।

0: मैं हूँ असमनूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
1: हर कदम दिखाओ
2: गुलोनी होरेस्ता पुंदे हमाह के डेरी ज्याते हारा बेवे नु दुमरा जर सिंगर टिक्शुले या होरेन होरे माह हमाह के डेरो कपनो क्री क्री में इस्तेमाल करल हुमा ते ही स रिजल्ट ओ फायदा न कड़ारा और चिकला मा उरुसा शॉपिंग सेंटर ना जान द पारा इश्म क्री क्रीम रावल नु मा ते डेर जबरदस्त रिजल्ट राको रज गुलोनी होरे जे जय हम जान द पारा रावड़म इश्म क्री क्रीम کتاسو هم واړو چې مونږ پوندې صفا سوترا او هیڅ شي نو یو ځل ضروري

आप सुन रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करण। आप सुन रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करण।